स्रोते कई कोट पीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नव तन नाम ध्यान है, नान करते का अंत ना पाव है। कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी।

पदी मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कौ एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राखे को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किनै ना पाई अनेक भगत बंदन नित कर है।

आप अष्टपदी जब अकार एहु काश नाम दृष्टे ता पापुन तब कहते होता। जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम। आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत।

पंच प्रधान ते जिह जान्यो पर पंच कुसंबास बहुरंग कणो सब मिथ्या बल बंच नह जापै नह बूझिए नह कछ करत विचार स्वाद मोह रस देओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना विचार विवेक पाओ भगत।

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े।

सेवा करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

कहै बड़ हम ही जिसह बुझाए सोई बूझै बिन बूझे क्यों रहिए सतगुर मिले अंधेरा चूकै इन विद्मान कलहिए।

ढूंढ जब आवा जिह गढ़ गढ़यो सो गढ़ मह पावा जिह गढ़ गढ़यो सो गढ़ मह पावा नाना रण रूतो नर ने ही करे ना निवै ना फुन संचरै।

संतापी दुर्मत त्याग लाहा किसले वहो जो उपजाय सो अलाख अपे वहो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलया भगत दृढ़ाई।

कहाओ। हर हर हार कंठ ले पहरे, दामोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पहरे, इन विद चित तहे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे, परमेश्वर पट ले, तीरज धड़ी बंधावे कामन, श्री रंग सुरमा देई।

पहला गुर का शब्द मने मह मुंद्रा खिंथा खिमा हंडावाऊं जो किस करे भला कर मानो सहज जोग निध पावाऊं।

गुरमुख हर गुण आख बखानी, जब जब नाम मन भया आनंदा, सत सत सत गुर नाम दृढ़ाया, सत सत सत गुर

सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक है सगला पासारे। जब जब होए सगल साध जन, एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

सच अमली आसा महला पंजवा उद्यम किया कराया आरंभ रचाया नाम जपे जप जीवना गुर मंत्र दृढ़ाया पाए परहें सतगुरु कै

आढ कौ फिरत ढूंढते, मन सगल तृष्ण बुझ गई। एक बोल पी खब तो नाही, साध संगत सीत लई।

जहई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़।

ले हो भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे अपना भाणा तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा।

मन हर हर भाओ गुर करे पसाओ जीवन मुक्त सुख होई जीवन मरण हर नाम सुहेले मन हर

गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कैर दै बसिया मिटे तिसहै विसूरिया अगाध बोध

कहे कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोई आसा। जो मैं रूप किए बहुतेरे अब हुन

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग

गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बियोग। मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण काट जमदूत फास रहा। शतर दहन हर नाम कहन अवर कश ना उपाओ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआओ। गुजरी महला पंजवा तू समरा।

जप मन नाम हर शरणी संसार सागर तार तारण रम नाम कर करणी रहाओ। ए मन मृत शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधन हर नाम मन रमन चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं

चलमान मन मनम सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर भव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ शरणी लब लो।

आए मनमुख फूले देख लगे अहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया।

जन्म गवावे एक मूढ़ मुगध ना चेतह मूले जो आया तिस जाना नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाना तेरा

सदा सुख बसहि, सदा सच रता मन निर्मल, आवन जान रहाए। दूजै पाए परम विभूति।

हाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सखाई मन मुख अंधले ज्ञान विहूने दूजे पाए खुआई।

ही है, कार्य सब किश करण है जोग, सात अनरंड न कबहूं वैसई, ना कदे हो वै सोग, ना कदे हो वै सोग, अन दिन रस भोग, सात अन महल सवाणी, जिन प्रयो जाता कर्म विधाता, बोले अमृत बाणी, गुणवंतियां गुणसार है अपने, कंत संभाल है।

मिल है जे सतगुर लागह साचे पाए। सतगुर सदा दयाल है अवगुण शब्द जलाए। अवगुण शब्द जलाए दूजा पाओ गवाए। सच्चे ही सचराती सच्चा शब्द सदा सुख।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेशया गुर विटड़े हो।

पौड़ी। सो सतगुर सेव हो साध जन, जिन हर हर नाम दृढ़ाया। सो सतगुर पूजहो दिन सरात, जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया। सो सतगुर देखो एक निमख निमख,

कौरो वहे इह दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग भोगावे गुरमुख सो अनरागा हर रस ऊपर अवर क्या कहिए जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहित जिन

आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जप हो सुख होई अहनिस गुर के चरण सरेव हो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलता ठाक रखो कर अपने गुर मिले ए मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो।

बन खंड जाए जोग तप कीनो, कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी शब्दी मोनी, जम के पटै लिखाया।

भया भिखारी अक्षत राज बिशरत दुख पाया सोगत पई हमारी। राज पोयंग प्रसंग जैसे है अब कश मर्म

अजहू सहिय दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बेकह राजे इंद्र संसार ग्रह आसन बिन हर भगत कहो।

नाही। सहज समाध उपाद रहत फुन बड़े भाग लिव लागी। कह रविदास प्रगास हृदय तहर जन्म मरण पह पहगी। जो

आई किव छुट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जप्यो तरह तरह की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपा।

सुख दर्दब पसम संगीत अमृत संग नाहे रुचियावत बिखैठ गौरी प्रीत उत्तम संत पले संजोगी इस जुग मह पवित्र पवित्र पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बाद रह जीत जन्म जन्म।

कर नजर मेल मिलाया, कहन कह सब कोए के वड्याखी है, हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है।

बिन गुर मूड भये है मन मुख ते मोह माया नित फाथा। तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा। जिन साधु चरण साध पद सेवे तिन सफलो जन्म सना।

हर हर हर भगत दृढ़ावहो, हर हर नाम उमाहाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर

रहाउ। सुख आराधन दुख आराधन बिसरै न काहू बेरा, नाम जपत कोट सूर उजारा दिन सह परम अंधेरा, थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा। संत

परमेश्वर है आदि पूर्ण मध्य पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है सिमरंत संत सर्वतर रमणं नानक अगनासन जगदीश्वर है देखन सुनन सुनावनो मन महेंद्रिय साच पूर रहो सर्वतर मैं नानक हर रंग राच पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समरथ प्रभ जो करे सो होई खिन मह थाप उथाप दा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझ सी निर्मल जन सोई सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास

रहाओ। ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी, ऐसो अमर मिलियो भगतन को, राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा